0: great stuff. This is the last ad break, so enjoy it.
1: Sunny Govan, 103.5 FM, broadcasting from the heart of Govan.
2: We provide employability support, radio skills training, and workshops.
3: Local music, news, and events.
4: Find your voice through community radio.
5: Sunny G, 103.5 FM, and online.
6: Created by volunteers, made in Govan.
7: Sunny G Positive Destinations Project आपके लिए रोजगार या ट्रेनिंग के मौके हासिल करने में मदद फराहम करता है। हम आपको CVs, cover letters, job application forms लिखने में मदद कर सकते हैं। इंटरव्यू के एडवाइस देने के साथ साथ आपके ड्राइविंग लाइसेंस, PVG या पासपोर्ट के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने में और कॉलेज या मजीद तालीम की कोर्सेज के लिए अप्लाई करने में भी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए sunnyg.org पर विजिट करें या 01414453741 पर कॉल करें। मुफ्त मुलाकात की बुकिंग के लिए javed@sunnyg.org पर ईमेल करें। Sunny G Radio आपको पॉजिटिव डेस्टिनेशंस तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है।
0: Welcome to the last, 15 minutes, I think, of the show. 12 minutes, maybe something like that. You listen to Totally Wired with me, San Fran, and Sunny Govan Radio 103.5 FM.
8: It's so sharp, they don't...